ना टूटे ना मलके ना जल न जाए संत मानस नानका जो कल चले पाए सगुण बोले।

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है, हम तैसी किट कमाई। एज इज द डेस्टिनी प्री ऑर्डेन्ड बाय द क्रिएटर, सो आर द डीड्स वी डू। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। ही बिलीव्स द माइंड एंड बॉडी आर ऑल हिज ओन, दैट इज द कॉज ऑफ हिज कमिंग एंड गोइंग। जिन दिया सो चित ना आवे, मोहे अंत लपटाना। ही डज नॉट थिंक ऑफ द वन हु गेव दीज थिंग्स, ही इज ब्लाइंड एंटैंगल्ड इन इमोशनल अटैचमेंट्स। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपार। One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, Nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo deen ke date, mera gun ab gun na vicharo.

0: दयाल ना तो सर मेरे वर्गा दीन कोई नहीं तो तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं। मोसो अज्ञानी ना तो सो बिचारी मेरे वर्गा अज्ञानी कोई नहीं तो तेरे वर्गा ज्ञान बख्शन वाला कोई नहीं। फिर मोसो न पतत न पावन तो सर हे सदगुरु मेरे वर्गा पापी कोई नहीं तो तेरे वर्गा बख्शन वाला कोई नहीं। पत पावन कोई नहीं तेरे जिमें मां अपने बच्चे के उगण नहीं जे वेखती नहीं वेख क्या झाड़ फूट जी तेरा सुभाव भी ऐदा ही है। मोसो ना पतत ना पावन तो सर मेरे वर्गा पापी कोई नहीं तो तेरे वर्गा पतत पावन कोई नहीं। मोसो बिकारी ना तो सो उपकारी मेरे वर्गा बिकारी कोई नहीं तो तेरे वर्गा उपकारी कोई नहीं। मोरे है उगण तू गुण सागर मेरे अवगुण बहुत ने तो तू गुण का समुद्र मेरे अवगुण बहुत ने जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमार। मोरे है अवगुण तू गुण सागर जातर सातल ओठ तुहारी अवगुणा दे बोझ करके असि गर्क हो रहे हैं पर ओठ तेरी है भरोसा भी तू सानू रख लेना सब आपको सब शब्द पढ़े कृपा करो दीन के दादे मेरा गुण
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लाइव गुरबानी कीर्तन 24 hours a day from our

विस्मादरं विस्मादलांगे फिर जंत विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे बड़ानी

पड़ पड़ गड्डी लद्दी है पड़ पड़ परिये साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़िए खात, पड़िए जेते बरस।

मनो विसार मत्ती मरण विसार खुशी की दिन चार चार एक दिन की खुशी की उसने बिल्कुल ही भुला दिता कि आ जिहड़ा मेरा जीवन है ये तो एक बुलबुले तो ज्यादा वध के अहमियत नहीं रखता। जैसे जलते बुदबुदा उपजे दिल से नीत जग रचना कैसे रची कौ नानक संगीत। असी एक पानी देते जो बुलबुला होंदा है उस तो वध के कुछ नहीं है। कई बंदे कह देंगे हम यू डोंट नो मी, हम कई बंदे ये गल कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा पता नहीं है, यू डोंट नो मी। महाराज जी कहते हैं हाँ सानू तो आड़ा पता है, सानू पता है तो आड़ा कि तुसी कौन हो। एक पानी के बुलबुले तो वध के कुछ नहीं है वो तुसी, तो कई जानते कि यू डोंट नो मी। असं कह दें कि यू डोंट नो मी, महाराज जी कहते हाँ सानू पता है तुसी कौन हो। दुक्का अस्त रक्त प्रेते चाम इस उपर में रखे कुमार हड्डियां लहू नाड़ियां पिंजरा मिर्च एक आदि गंदगी का एक फैला है इस उत्ते मान करते उत्ते कहते मैं तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ। वो कहते सानू पता है तुम कौन हो, बाकी तुम कहते हो कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ। वो कहते पता है जन्म जन्म की इस मन को मन लग गई अंदर खुदा मैल ही मैल है और कुछ नहीं मैल ही मैल। असं कह दें कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है कौन हो, सब को भरिया फूक हमने भी फूक न सारे भरे पैन वी नो यू। बाबा जी कहते मैं नहीं कह रहा था, गुरु बाबा जी कहते असं एग्जैक्टली जानते हाँ कि तुम कौन हो, हमने भी फूक के नाल भरे पाए हड्डियां बिस्ता मास लहू नाड़ियां का एक पिंजरा हो अते ए पिंजरे का इतना भी परिभाषा नहीं है, क्या परिभाषा इस पांडे का इतना को लागे थनका, इतना को थनका लगे तो ये सुख सकता है मुड़ के द्वारा ये जुड़ता नहीं। इस करके कहते मौत में याद रखो, मौत में याद रखोगे तो तुहाडी अटैचमेंट जो है अपने आप नाल अपने तन नाल अपने बाकी तमाम चीज़ों के नाल टुटन का तोड़न का जीवन वैराग पैदा करन का एक ही साधन है कि मौत में याद रखे। जो मौत में याद रखेगा उसके भी ही जिंदगी दे फर्दर सवाल आएंगे कि मौत तो बाद की होगा फिर मैं ही बनागा, अदरवाइज एक क्वेश्चन पैदा नहीं होगा। तो गुरु की टीचिंग दूसरा पॉइंट यह आता है कि मौत में याद रखो। हम मैं दसो ये मत कितने मिलती है, जो मिलती है तो दस दो, कोई यूनिवर्सिटी लॉ के कोर्स मेडिसिन के कोर्स के होर किसी कोर्स के सिखाते हैं कि मरना भी याद रखो, बिल्कुल ये है गुरु की मत। जो असेंशियल चीज़ा गुरु की मत में सिखा लिया जानिया की किसी भी होर मत के दायरे के आदि ही नहीं है, होर बहुत कुछ है। गुरु महाराज सिखा दिन सादा रहो सादे रहो, हम ये कौन सिखाता है कि सादे रहो। साड़िया लाइफ जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी कॉम्प्लीकेटेड हैं, बड़िया लग्जरियस हैं, इसके एक्सपेंसिव भी हैं, एक्सपेंसिव होने करके स्ट्रेसफुल भी हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन रही हैं। और महाराज जी कहते उस सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की। हम उसकी मिसाल सुनो, कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी उसे कहते कबीर खूब खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन, कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है जेदे सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है ना, तो बनाने में चिर लगे ना, उस दिन फैट प्रॉब्लम होवे ना, उस दिन कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे तो ना ही उस दिन ग्रोसरी का बिल वधे। कहते खूब खाना खिचड़ी जा मैं अमृत लोन, ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जेरा रोटी कार नहीं गला कटावे कौन, जेरा रोटी कहते मांस वाली रोटी नहीं चला मुर्दार ले आओ।

0: और सब तो पहला एक शब्द दसम पातशाह जी का कल्याण दाल दे विच बिन करतार ना कीर्तम मानो। सतगुरु जी ने धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कल्याण दाल दे विच इस शब्द नु उच्चारण किया है। कल्याण पातशाह दसवीं उसी राग दे विच इस शब्द श्रवण करो। बिन करतार ना कीर्तन मानो आग अजोर अजय अविनाशी तेह परमेश्वर जान। आओ जपो सारे
1: बिन करतार

0: धन धन साहिब जी गुरु साहिब जी महाराज आप दी पवित्र बाणी दा सत्कार करदे हां आप दी संगता वल्लों बेनती मैं जरूर जी दादा जी सरबत सुंदर गुरु को सिक्खी दाता सुभ मनुख पुख ने चढ़दियां कला देश प्रदेश के अपने मुखले जग न मुख सतगुरु जी रोज चुग दी खिमा करन फतेह बुलाई प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नजर करे। आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट बिकम्स ब्लेस्ड इफ आई रिसाइट द ट्रू वर्ड। ही हु इज डेस्टिन्ड एंटर्स द लॉर्ड्स कैसल थ्रू द गुरुज ग्रेस। माइंड यू ओ माई माइंड द वन एंड वन अलोन, विदाउट हिम ऑल एल्स इज वेस्ट, इल्यूजन, माया एंड फॉल्स लव। वन एंजॉयज मिरियड्स ऑफ चॉइस, वन इज ए किंग इफ द लॉर्ड्स ग्रेस बी अपॉन हिम।

खन्नी अवगुण कीते गुण परवाने हों तिसदे चौखन्नीए मंदा किसे न आख वखाने हों तिसदे चौखन्नीए आप ठगाए नोका पाने हों तिसदे चौखन्नीए पर उपकार करे रंग माने

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एत संपैना सुहेद को। स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को। पलना सो आए माए गृह काज लागे जाए, पलना सो आए माए गृह काज लागे जाए। सुन सुत रुदन पै पियावे मन मोद को।

है जाके पीख मांगन पिखारी दी, देख अधीने निराशो ना बिडार है। बैठत है जाके द्वार आशा के बिडार स्वान, अंत करना के तोर टूकताए डार है। पायन की पनीर है परहरी परी, ताहू काहू काज उठ चलत सुमार है। छाड़ अंकार छाड़ होए पुरमार्ग में, छाड़ अंकार छाड़ होए

गुरुमुख नीचो नीच सदाए पैरी पैपा खा कोए गुरुमुख गुरसिख आप गवाए साध संगत पौ पाओ कर सेवक सेवा कार कमाए मिठा बोलन निव चलन हथों दे कै भला मनाए शब्द सुरत लिवलीन होए दरगै मान निमाणा पाए।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरु सिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।

श्री गुरु गोविंद सिंह कर करना पाए भले मग चारों वरना जेड़ा सिख अपने गुरु का शुकराना अदा नहीं करता भाई साहब आखते ने उस वर्गा नीच ते अकृत कण दुनिया ते नहीं मिलेगा। कलगीधर पातशाह जी ने तैनू कीड़े तो पातशाह बनाया किन्ने उपकार हन तेरे उत्ते ऐ गुरसिख कदी तू कलगीधर पातशाह जी का शुकराना अदा कीता है। अज गुरु रामदास अपने गुरु का शुकराना अदा कर रहे हैं अपने आप नूं कीड़ा दस रहे हैं तू कितना कुछ शुकराना अदा करना है। हजूर आखदे ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी श्री

जिनकी कुल मूढ़न की महा, जिन्हां दे कुल खानदान अनपढ़ सन, मूढ़ सन, उन्हां नूं पढ़ा के गुरुदेव ने निर्मले संत बना दिता। जिनकी कुल मूढ़न की महा, अखर भेव न जाने कहा, से पंडित तब पढ़ पढ़ बने, निज समता किसको ने गने, इम गादर पे शेर बनाए, बायस हंस चाल सिकराए। जिदरा तू शेर ते कावा तू हंस बना दिता,

क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हो बुल बलहारी गुर आपने, जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा धार।

तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श ले हर भावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, उपदेश दियो हर नाम छडावे। तुम्हारे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छडा। तू गुरु पिता, तू है गुरु माता, तू गुरु

नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग रूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा, नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौंव दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

मैं जे बेमुख मुख डिठे बजर पापा बजर पा मैं जे कर वैरी इठे कर कर सिठा बेमुखा आपो बुरे जान कै सिठे लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुंद समावन चिठे चिट्ठी हूँ तुम्हार लिख लख लख एक दो एक दुठे कर कर संग हो रहे हैं होए मस्करा।

हो बेमुख मंदा चोर यार जो आर हो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खो ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानिए। जैसे दिन करके उदोत जोत जगमग उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए। सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिए। तैसे मिल साध सं

अवरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी।

अनाथ नमो सर, तो सोना दानी न मोसो भिखारी, मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी, मोसो न पतित न पावन तो सर, मोसो बिकारी न तो सो उपकारी, मोरे हैं अवगुण।

खालसा धर्म नहीं है, खालसा है पंथ। ते पंथ दा मतलब है राह, ते खालस दा मतलब है पवित्र। पवित्र राह दे उपर चलन वाला कोई महापुरख, कोई संत जन, कोई जग्यासु, जिसनु पूरे गुरु दी कृपा द्वारा इस राह दी सोझी हो जाए। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने इस दिया कुछ कुछ शर्तां दसियां, नियम दसे हन। वही गुरसिख दी डेफिनेशन की है, ओ लिखदे ने भी गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, इशनान करना, गुरु की बाणी दा जाप करना, फिर सत संगत विच आके गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण करना, सेवा करनी, गुरसिख साध संगत दी सेवा करनी, दसवंध गुरु दी समर्पित कर देना, ते आपा भी गुरु दी समर्पित कर देना। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह कहंदे हन, जेड़ा जागत जोत नाल जुड़िया होया है, जागदी जोत नूं हमेशा जपे, चिरंकाल सदीव काल हिरदे दे अंदर उस नूं धारण करे, उस नूं खालसा कहा जांदा है। ओ खालस हो जांदा है, शुद्ध ते नरोल हो जांदा है, जेड़ा संसार दे वहमां भरमां तों दूर हो जांदा। ब्रत गोर मड़ी मट भूल ना माने, जेड़ा इन्हां चीजां नूं ना मनदा होवे, जेड़ा तीर्थ दान दया तप संजम इन्हां नूं एक अकाल पुरख तों बगैर ना मनदा होवे, क्योंकि एक अकाल पुरख महाराज दे सिमरन तो बगैर बाकी दियां चीजां सारियां अधूरियां हन। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने खालसे दी डेफिनेशन उपमा कीती है, कहिंदे खालसा मेरा ही रूप है, ते मैं इस दे अंदर निवास करदा हां। जेड़ा खालस शुद्ध स्वरूप नजर आउंदा होवे, गरीब नवाज सचे पातशाह कहिंदे मैं उस दे चरणा दी खाक नूं लोड़दा। धन गुरु रामदास महाराज दा।

विस्तार केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बाह बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा कि नहीं भवन सब

सब ना होए दारू सब ना होए दारू पाप कटे धोए नानको खाने बेनती खिन सच पर।

तिन्नी खसम त्याया इना जनता कह वस किश नाही तुवे की जग तो पाया एक नानू तू मिल कापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही सच समाया।

कबीर साहब सत्संग जी हो, दुनिया विच बड़े बड़े खुशी दे मौके हैं और तरह तरह नाल दुनिया अपने मन की खुशी जाहिर करती है। इस दुनिया विच जेड़े भगत लोग हैं, जेड़े रब दे बन जाते हैं, जेड़े परमात्मा दे चरण अपने मन विच वसा लैंदे हन, जिन्हां नूं अपना सच्चा पति रब लगन लग पैंदा है, एका पिर सखियां सब पिर की, खसम ते ओ आप है असी ते सब दासियां हां। कबीर साहब कह रहे हन, मैं किहो जिहा दूल्हा मैनू पाया, मैनू रब वर्गा दूल्हा मिलिया है। राम राय सो दूलो पायो अस वड भाग हमारा। बराती मेरे नाल कौन हन, मेरे पंजो तत्। रब ने मेरे ते कृपा कीती है, मेरे मन रूपी सेजा ते आके चरण पाए हन, मेरे ग्रह आए राजा राम पथारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस तेती करोड़ देवता इस गल दा साक्षी है। की साक्षी है, कह कबीर मोए ब्याह चले हैं। पुरख एक भगवान, पुरख एक है, पुरख ओ वाहिगुरु आप है, असी ते सब उसदियां दासियां हां। तू ठाकरो बहरागरो मैं जे ही कण चेरी, मेरे वर्गियां लखां दासियां करोड़ां दासियां तेरे दरवाजे ते चाड़ू पईयां दिंदियां हन। मैं जे ही घन चेरी राम तू सागरो रत नागरो, हौ सार ना जाना तेरी राम, सार ना जाना तू वडदाना कर महरमत साई, कृपा कीजे सा मत दीजे आठ पहर तुद त्याई। ऐसी मैनू मत दवो, ऐसी मेरे ते कृपा करो कि मैं आप जिनू अठो पहर हर घड़ी तुहानू जपा वाहिगुरु। ते जिन्ना रे वाहिगुरु नू जपया उन्ना दी जिंदगी दा नाम ही सुख बन जांदा है, ते जेड़े रब तो बिना हन ओह दुखी हन, ते जेड़े रब वाले हन जेड़ियां खसम वालियां हन ओह सुखी हन। तो गुरु कृपा करे ये सुहाग तुहाडे जपण वालियां दा बनिया रहे। कह कबीर मोए।

हे शब्द शेख फरीद जी दा सूही राग दे विच, सूही राग दे विच आप जी इस शब्द नू दासा पासो श्रवण करो।

ये पंज सुर का राग है, सा दा मा धा नी, पंज सुर है। इसमें जले और पा ये नहीं लगना। निषाद बदल गया ना, माल कौश का निषाद नीवा, चंद्र कौश का निषाद उपरला। इस चंद्र कौश धानी धानी सूरज कौश।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे आ

ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात पराई, जब ते सात संग तुम पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब कीनो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब मेरा रहे अपना भी कह, देख देख नानक साई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, यह तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इतने बहुत वड़े वड़े गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कह लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असां ही वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए, कहिंदे गाए ते तुसीं सुनाओ, इह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, तिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार वजदा और दीन जड़ा है वचित्र वीणा वजदा, यह साजा के दर्शन कराए ने।

तो मेरा भाव कहता है कि जेडे प्रचलित शब्द ने वो तो आप पढ़ लें, जेडे औखे शब्द ने वह भी राजी सिंह पढ़ने चाहिए ने। हां जी, तो राजी सिंह इधर भी ध्यान देना चाहिए, संतां नूं सरवण करना चाहिए, राजी सिंह गायन करना चाहिए। आनंद साहब जिहड़ा है वह मर्यादा किवें पढ़न दी, जोटियां दी धारना पढ़ लैंदे आ ना, यह मर्यादा नहीं। मर्यादा है राग रामकली दे विच और तीन घर दे विच पढ़ना, घर तीजा रामकली। तो उसका स्वरूप सरवण करो जिवें साहिब आप आनंद साहब पढ़ते हुंदे सी रामकली राग।

पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात दो दाई दया खेले गर्मी अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मशक्कत नानक